सतीश नाबर महाकारुणिक बुदुरजानन वहन्से विसिन लोक सत्त्वया वेत अनुकंपावेन देशना करन लद आरक्षक परित्राण देशना अतरिन महा समय सूत्र देशनाव अति विशेष वोगे तारका समूहयक पिरिवरा बेबलेन पूर्ण चंद्रयासे एदा कपिल वस्तु नगरा सन